अरे गदकू, ओ पांड्या, अरे ओ धोंडिया, अजी गधव प्रसाद, अमा छनमिया, अरे ओ बिच्छू महाराज, ओए बड़बड़ सिंह, तने किधर पधारो और सुनो मेरी कथा जिसमें भरी है भीषण व्यथा। गलियन का धर्म अलग है, अलग है रीत रिवाज, का समझे ना समझे तो समझ लो हमसे,

천천 천천 천천 천천 천천 천천 천천 천천 천천 천천 천천 नटकर छोरी बनके चकोरी चंचल गोरी कर दिल की चोरी कभी लचक लचक कर कभी चमक चमक कर कभी झटक झटक कर कभी मटक मटक कर कभी लटकाऊ लटकाऊ कभी झटकाऊ झटकाऊ कभी ठुमकाऊ ठुमकाऊ कभी मटकाऊ मटकाऊ लचक लचक चमक चमक झटक झटक मटक मटक पलट तेरा ध्यान किधर है भाई।

जमादार पकड़ लो इन बंदरों को और सुनो सुनो इन घोंचू पाखंडियों की कार्यक्रम। अरे वड़की जिनको सुनकर टूट जाएंगे तुम्हारे सारे भरम।

अरे अरे अरे मूरख रुक जा, ये मामा मामा मामा मांड के हरवा के ठेठे ठेके भुला कर दादरे के कुकू कुएं में कैसे कुकू कुकू कुकूत पड़ा। निकल बाहर, पलट पलट पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: Four

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

मोहब्बत के मारे झील किनारे प्यार की चांदनी में नहाते हंसते खेलते मुस्कुराते नहीं जानते थे कि जिंदगी क्या दिखाने वाली है। बस अगले ही मोड़ पर बिछड़ने की घड़ी आने वाली है और फिर

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: हे हे,
2: हाय हाय,
1: बाफ रे बाफ,
2: वाव वाव,
1: जाऊ न जाऊ,
2: आऊ त आऊ, श्रेष्ठ टेलरिंग,
1: या बेबी या।

विश्राम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। और यही समझाने के लिए कुछ बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं, जिससे ये बात स्पष्ट होती है, समझ में आती है।